0: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद शफीक से लाखाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानी पर्चों के अफशा के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के क़याम का ऐलान किया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो नीट पेपर लीक मामले पर मबाहस में रुकावट डाल रही हैं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने हैदराबाद में 11वें आल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर का इफ्तिताह किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने ग्लोबल अरेना कंपनी से मुतालिक इल्ज़ामात पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को कानूनी नोटिस जारी की है और बीजेपी ने तलबा की फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदायगी के लिए रियासतगीर तहरीक का आगाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि मरकज़ इम्तिहानी पर्चों के अफशा के मामलों में मुलव्वस अफराद को फौरी और सख्त सज़ा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें क़ायम करेगा। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवानों की फलाह व बहबूद और उनका मुस्तकबिल हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। उनका यह बयान नीट पेपर लीक मामले के ख़िलाफ़ दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा के एहतजाज के दौरान सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका हुकाम को इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इकदामात करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वालों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह फ़ैसला मुतअद्दिद इकदामात के एक हिस्से के तौर पर किया गया है। मरकजी वजीर बराए पार्लियामानी उमूर किरण रिजिजू ने आज अपोजिशन जमातों पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत की जानिब से नीट पेपर लीक मामले पर मबाहस की यकीन दहानी के बावजूद ऐवान में बहस नहीं होने दे रही हैं। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मबाहस के मतालबे को कबूल कर लिया है, लेकिन अपोजिशन नई शरायत आयद करके बहस से गुरेज कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी बहस के दौरान अपने मुतालबात पेश कर सकती है।
1: वो बहाना जुड़ रहा आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में ही बोलता है अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं ना, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
0: रियासती वजीर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी की हुकूमत ने बढ़ती हुई बेरोजगारी और इम्तिहानी पर्चों के लीक के वाकयात के बायस नौजवानों को मायूस और ख़ुद से दूर कर दिया है, जबकि आईनी अकदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाले पुरमन एहतजाज को भी दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तलबा के हकूक, मसावात और इंसाफ के लिए बेखौफ अंदाज में आवाज़ बुलंद करते हुए एक मुतबादिल कौमी रहनुमा के तौर पर उभर रहे हैं और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जमहूरी क़ियादत और नई उम्मीद की अलामत बन रहे हैं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़े बालायोगी स्टेडियम में 11वें आल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर 2026 का इफ्तिताह किया। इस मुकाबले में मुल्क भर से तकरीबन 36 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों के फ़रोग के लिए 4,480 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और उन्हें यकीन है कि भारत 2036 तक खेलों के मैदान में दुनिया के 10 सरे फहरिस्त मुल्कों में शामिल हो जाएगा, जबकि 2047 तक 5 सरकर्दा ममालिक में अपनी जगह बना लेगा।

उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। बंडी संजय ने तकरीब के दौरान अहम कौमी असासों की हिफाजत में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के किरदार को भी सराहा। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के एक वफद ने जुमेरात को मरकजी वजीर बराए जल शक्ति सीआर पाटिल से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। इस मौके पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र, कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी, एम रघुनंदन राव, धर्मपुरी अरविंद, गोडम नागेश, डी के अरुणा और रुकन असम्बली पालवा हरीश बाबू भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान तेलंगाना की मुख्तलिफ आपाशी स्कीमों, बिलखसूस कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से पेश की जा रही हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने ग्रैंड ट्रंक रूट पर खाजीपेट और बदारशाह के दरमियान 203 किलोमीटर तवील तीसरी रेलवे लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम मुकम्मल करके एक अहम संग मेल हासिल किया है। आसिफाबाद और सिरपुर के आगज नगर के दरमियान आखिरी 11 किलोमीटर के हिस्से और बीबरा नदी पर पुल की तकमील के साथ तकरीबन 3,000 करोड़ रुपये लागत का यह पूरा मनसूबा अब फ़ाल हो गया है। इस मंसूबे से मुसाफिरों के हजूम में कमी, माल बर्दारी की रफ्तार में इजाफा, मुकामी सनअतों को सहूलत, ट्रेनों की रफ्तार में बेहतरी और माहौलियाती तहफ़ को फ़रोग मिलेगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन कानून साज काउंसिल महेश कुमार गौड़ ने पार्टी के तर्जमानों के साथ आज एक अजलास मुनक़द किया। अजलास में सियासी सूरत हाल, हुकूमत की फलाही स्कीमों की तशहीर और अपोजिशन की तनकीद का हकायक की बुनियाद पर जवाब देने की हिकमत अमली पर तबाल ख्याल किया गया। उन्होंने तर्जमानों पर जोर दिया कि वह ज़रा इबलाग के साथ मौसर रबता बरकरार रखें, मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर हुकूमत की तरक्याती कामयाबियों को नुमाया करें और अवामी मसाइल पर पार्टी का मौकफ वाज़े अंदाज में पेश करें। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलिन तरजीह है और पार्टी नुमाइंदों को अवाम की मजबूत आवाज़ बनकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को कानूनी नोटिस जारी करते हुए मुतालबा किया है कि वह 48 घंटों के अंदर ग्लोबल अरिना टेक्नोलॉजी से मुतालिक उन पर लगाए गए मुबैना बेबुनियाद और हतकामेज इल्जाम पर गैर मशरूत अवामी माफ़ी मांगें। नोटिस में बेनामी मिल्कियत, सियासी असर रसूख और इम्तहानी बेजाबतगियों में मुलविस होने के इल्जाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए उन्हें केटीआर की साख को नुकसान पहुंचाने की बदनीयती पर मबनी कोशिश करार दिया गया। नोटिस में कहा गया कि एक आईनी ओहदे पर फायज शख्सियत की जानिब से बगैर सबूत ऐसे इल्जामात करना जायज सियासी तनकीद के दायरे से बाहर है। इसमें खबरदार किया गया कि अगर मुकर्रा मुद्दत के अंदर चीफ मिनिस्टर अपने बयानात वापस लेकर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर दीवानी और फौजदारी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने तेलंगाना के तकरीबन 25 लाख तलबा को वाजिबुल अदा फीस की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए रियासतगीर तहरीक का आगाज़ किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की क़ियादत में इस मुहिम का आगाज़ निज़ाम कॉलेज में पोस्टर की रूनुमाई के साथ हुआ। रामचंद्र राव ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह हाईकोर्ट की सरजनिश के बावजूद तलबा के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने खबरदार किया कि जब तक तमाम बकायाजात अदा नहीं किए जाते और नौजवानों से किए गए वादे पूरे नहीं होते, बीजेपी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में अपनी एहतजाजी तहरीक को मजीद तेज़ करेगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुसनाबाद असम्बली हलके में एल नैनो के बायस पैदा होने वाली खुश्कसाली की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए 3 अजला के हुक्काम के साथ एक जायज़ा इजलास की सदारत की। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल, पीने के पानी के तहफ़ बुनियादी ढांचे के मनसूबों की बर वक्त तकमील और धान की काश्त के बजाय बारानी फसलों की हौसला अफजाई पर जोर दिया। उन्होंने बारिश के पानी की जख़ीरांदोजी, बिजली के मौसर इस्तेमाल, मवेशियों के चारे के बेहतर इंतज़ाम और सरकारी फलाही स्कीमों के मौसर निफास की हिदायत देते हुए हुसनाबाद को प्लास्टिक से पाक एक मिसाली हलका बनाने की अपील की। सदर जमहूरिया ने, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की विजिटर भी हैं, वजारत तालीम की सिफारिश पर वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद आयनुल हसन की मियाद कार में तौसी को मंजूरी दे दी है।

और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानी पर्चों के अफशा के मामलों से निमटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के क़याम का ऐलान किया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो नीट पेपर लीक मामले पर मबाहस में रुकावट डाल रही हैं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने हैदराबाद में 11वें ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर का इफ्तिताह किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने ग्लोबल एरिना कंपनी से मुतालिक इल्जाम पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को कानूनी नोटिस जारी की है। और बीजेपी ने तलबा की फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदायगी के मुतालबे के साथ रियासतगीर तहरीक का आगाज किया है। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाकाई खबरें अब खत्म होती हैं।

0: హిందీలో వార్తలు వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే
1: సమాచార్ కి సాత్ మే మునీష్ శర్మ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया. प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है. मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी. श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है.
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें. विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं. सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं. मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे.
1: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की. उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे. संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली. सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया. परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है. आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है. भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं. यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है. भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विनिर्माण

है खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदऊ किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज रात बुखारेस्ट में रोमानिया के अपने हम मनसब निकोशोर डान के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वें दौलत मुश्तरका गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई।

0: अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा से ये कहते हुए बात करने की अपील की है कि हुकूमत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जारी एहतजाज के तलबा नुमाइंदगान को पिछले 24 घंटों में बात करने की 4 मरतबा पेशकश की गई। उन्होंने एहतजाजी नौजवानों को बात करने के लिए दावत दी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर जेपी नड्डा मुजाकरात के दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये बातचीत मरकजी वजीर जेपी नड्डा की रिहायशगाह या उनके दफ्तर में खुले जहन के साथ की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत के बगैर कोई हल नहीं निकलेगा।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि हुकूमत खासतौर पर इम्तिहान के पेपर लीक होने के मामले पर तालिब इल्मों की तशवीश से बखूबी वाकिफ है। मीडिया के साथ बात करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके इस जिम्न में भरपूर कार्रवाई की है। उन्होंने मजीद कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान का मकसद तलबा और उनके कुनबों को इस बात की फिर यकीन दहानी कराना है कि जो लोग इम्तिहान के वकार को मजरू करने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुतला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से यह कहते हुए अपील की कि वो शरायत ना रखे, क्योंकि इस तरह की शरायत को बहस से बचने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा।
2: वो बहाना जुड़ रहा, आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में ये बोलता है कि अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप, वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
0: मरकजी वजीर और ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने अपोजिशन की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि उनका तर्ज अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन न तो बहस के लिए तैयार है और न ऐवान की कार्रवाई चलने देना चाहती है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन बहस के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि पहले वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामलात पर बहस करने के लिए तैयार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंच गई हैं। कोटोसिनी पैलेस पहुंचने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सदारती महल में रोमानिया के सदर निकोशोर्डान ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। वफद की सतह की बातचीत जल्द ही शुरू होने वाली है। अब से कुछ देर बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के अपने हम मनसब जनाब डॉन के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगी। बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज में आज रात सरकारी इशाइये का एहतमाम करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे से तजारत और सरमायाकारी, दिफा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, तालीम, साइंस और इख्तरा समेत अहम शुबों में भारत रोमानिया ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती और आवाम से आवाम के तबादलों को फरोग देना है। रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक काबिल कदर शराकत दार है और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती माहदे के अख्ताम के साथ आने वाले बरसों में दोतरफा तो इकतदी शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। आकाशवाणी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।

0: साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत काबिले तजदीद तवानाई चोटी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2026 2 नवंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद किया जाएगा। आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जदीद और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर जनाब प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में सरकारों, पॉलिसी साजों, सनती रहनुमाओं

ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन दौलत मुश्तरक गेम्स 2026 में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी। दूसरी जानब भारत ने इफ्तिताही तकरीब से पहले ही अपने तमगों की मुहिम का आगाज कर दिया है, क्योंकि ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली बॉक्सर लवलीना ने बाय मिलने के साथ ही सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कुरानंदाजी में सिर्फ 5 खिलाड़ी होने की वजह से मुकाबला करने वाली 3 खिलाड़ी, जिनमें लवलीना भी शामिल हैं, को बराह रास्त आखिरी 4 सेमीफाइनल में पहुंचा दिया गया, जबकि बाकी 2 खिलाड़ी एक क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल्स में तफाकी के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगी, जहां जीतने वाली खिलाड़ी को सोने के तमगे के मुकाबले में जगह मिल जाएगी। दौलत मुश्तरक गेम्स 2026 में सिर्फ 10 खेल होंगे, जो बिरमिंघम 2022 के मुकाबले 9 कम है। ये मुकाबले 8 मील के दायरे में 4 मकाम पर खेले जाएंगे। इसमें एथलेटिक्स, तैराकी, 3x3, बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, वेटलिफ्टिंग, बाउल्स, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक, नेटबॉल, बॉक्सिंग और जूडो शामिल हैं। भारतीय दस्ता पैरा एथलेटिक्स समेत 125 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आज शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलावामी मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। सूर्यवंशी के 19 गेंदों में शानदार 50 रन ने भारत को सिर्फ 13 ओवर्स और 2 गेंदों में ही 126 रन का जीत का निशाना आसानी से हासिल करने की राह हमवार कर दी। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए थे। इस सीरीज का दूसरा मैच इतवार के रोज इसी मकाम पर खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदऊ किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के उनके हम मनसब निकोश ओडोन के दरमियान बुखारेस्ट में वफ्द की सतह की बातचीत शुरू हो गई है। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वें दौलत मुश्तरक गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आज शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलावामी मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार कयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: आए आए सुल्तान इब्न सुल्तान इब्न सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
2: काले से डर गए क्या?
3: हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या

0: दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। ये फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
4: बोल दो बापू।
3: बोल दे बेटा।
4: बाप

0: या
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है, रुपये के ही नाम का जहूरा है।

भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी और जिसके नायक होते थे महमूद।

0: ஆஷா பக்கம்மா பக்கம்மா
1: என் கண்ணா என் கண்ணா
0: பக்கம்மா பக்கம்மா
2: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
3: वनकम जी
4: ओ पहुंचिए ना।
3: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
4: क्या है?
3: खिड़की बंद करना जी।
4: क्यों?
3: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता ना।
4: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
3: अयो पहले बोलना ना ऐसा बात। डाय बोला तुम आना गाना गाना आना।
5: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
3: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, ये हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहा गाना गाना।
5: चल
3: चल तुम बताना बताना।
2: दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन।

0: घोड़ा बोला या चतुर बोला
1: एक पे कैसे रहती जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हूँ मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल ली गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देव बर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आर डी बर्मन को पूरी आजादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसे फिल्म का ये गाना। संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
2: सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विटरे का छुटा अपोजन ले, आओ ट्विटरे जिंदगी है यही। आओ ट्विटरे का छुटा अपोजन ले, आओ ट्विटरे जिंदगी है यही ना।

0: यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया है। देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, ने बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रो बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मतलब

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना। अय्यो अय्यो अय्यो अय्यो ओ मेरी मैना, तू मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना बिना बिना बिना। अय्यो अय्यो

0: अच्छा
1: हर्रा सुहाना होगा।
0: अच्छा
1: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।

0: साथ कोई भी नहीं गा रहा है। अरे सब लोग मेरे साथ गाओ।
1: अरे
2: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।